प्यार करो प्यार करो मारो मेरे यहाँ कुछ तो डरो भय तो करो बढ़ती है